मिलजुल नहीं जोन ने खुआ साख भी वाय साख चार वाय साख खलने वाले कई बार बंद में सुरुंगा सुरुंगा से बिजे जफल लग फिर भी छूट मेरा बोल मुन भी से पाम मुन संबंध होया और उपुल उपुल में ना कुपी से गई खाया और भी से मुन मामू जोया उपुल गोर को उपुले लुपुरी भी से दखार पूरे लामुर को डॉलर से नगार थाम लीजिए mamar murai ba gorko kullo ko ni ne kala yo ne kala bure makko lu kon mi ni kala ko ne dani arun ye wa sabi ne wa sa wa

जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिपे मामन अगर दुखा दर समाज